0: நிவர் பி ஜெய் ஸ்ரீதர் அவர்கள் வழங்கும் உரை நிகழ்ச்சி சென்னையிலிருந்து அஞ்சு கேட்கலாம். இரவு 8 மணி முதல் 8:58 வரை திரையிசை, 9:15 ஸ்பாட்லைட் டெல்லியிலிருந்து, 9:30 சங்கீத வானிலே, 10 மணிக்கு 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2026 குறித்த அன்றாட நிலவரம் நிகழ்ச்சி டெல்லியிலிருந்து, 10:20 பாரத பிரதமர் நரேந்திரமோடி அவர்கள் பொது சேவையில் 25 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்ததை முன்னிட்டு சிறப்பு நிகழ்ச்சியின் வானொலி தொகுப்பு கேட்கலாம். 11 மணிக்கு நிகழ்ச்சி நிரல், 11:10 முதன்மையாளி வரிசை நிகழ்ச்சிகள் யாவும் நிறைவு பெறும். இதனிடையே காலை 6 மணி பிற்பகல் 3 மணி ஆகிய நேரங்களில் ஹிந்தியிலும், காலை 6:05, 8:15 பிற்பகல் 2 மணி, 3:05, இரவு 9 மணி, 11:05 ஆகிய நேரங்களில் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும். காலை 6:45 மாநில செய்திகளும், காலை 7:15, பகல் 12:40, இரவு 7:15 ஆகிய நேரங்கள் தமிழில் செய்திகளும் சென்னையிலிருந்து அஞ்சலாகும். மாலை 6:10 புதுச்சேரி வானொலியின் மண்டல செய்திப்பிரிவு வழங்கும் மாநில செய்திகள் ஒலிபரப்பாகும். காலை 8 மணி, 10 மணி, 11 மணி, இரவு 8:58 ஆகிய நேரங்களில் செய்தி சுருக்கம் கேட்கலாம். இனி 102.8 FM ரெயின்போ புதுவையில் இன்று மாலை 4 மணிக்கு மாண்புமிகு பாரத குடியரசுத் தலைவர் திருமதி திரௌபதி முர்மு அவர்கள் குஜராத்தில் ஏக்தா நகரில் நடைபெறவுள்ள விழாவின் வெற்றியாளர்களுக்கு 72வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளை வழங்கும் நேரலை நிகழ்ச்சி டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் கேட்கலாம். இனி காலை 7:30 வணக்கம் மக்களே, 8:02, 8:30 நம்ம புதுவை நேரலையில் இணைகிறார் ஆர்ஜே ஆனந்தகுமார். 8:55 சைபாலின் இன்று ஒரு தகவல். வழங்கியிருப்பவர் மறைந்த தென்கச்சிக்கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள். 9:02 இணையவழி நேயர் விருப்பம், 10:02 கெட் செட் கோ கேம் ஷோ, 11:02 மெலடி மேஜிக் நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும், அதனை அடுத்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 AD को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ICI में अगस्त में वार्षिक आधार पर 4.8% की संचय वृद्धि दर्ज की गई। ये जुलाई के 5% की संशोधित वृद्धि दर से थोड़ी कम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध

0: शिक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना और उचित आदेश जारी करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण है। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए, जिसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। जापान एशियाई खेलों में आज महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में गत विजेता भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारत ने वर्तमान में 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Marking a new chapter in Indian cinema, President Draupadi Murmu will present the historic 72nd National Film Awards this evening at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honours, recognising artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature and writing on cinema, as part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting. The awards are being held outside the national capital. The ceremony at Ekta Nagar brings together cinematic talent from across the country, embodying the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat. The president will also honour the veteran actor Anant Nag and Dada Saheb Phalke Award for 2024. A report from our correspondent.
2: The stage is set and lights are ready in the iconic Ekta Nagar as Kevadia prepares to host the historic 72nd National Film Awards for the first time. Renowned actors, acclaimed filmmakers and technicians from across the country have started arriving at the venue for this grand celebration of Indian cinema. The ceremony honors the outstanding cinematic achievements for the year 2024. Among the major feature film announcements, Article 370 was selected for the best feature film, with Yami Gautam winning Best Actress for her role in the film. The Best Actor honour is shared by Mamuti for Brahmyugam and Karthik Aryan for Chandu Champion. Rajkumar Periyasamy earned the Best Direction for Amran, while Kalki 2898 ED was named Best Popular Film providing wholesome entertainment. Randeep Hooda won the Best Debut Director for Swatantra Veer Savarkar. In the non-feature category, the Marathi film Bhangar was named Best Non-Feature Film, while director Anand L. Rai was selected for the Best Direction for Statue of Unity Ekta Ka Prateek. Raviraj Murmu took the Best Debut Director Non-Feature Category honour for the Santhali film Angan. With Chirag Burania from Ekta Nagar, Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
1: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the third national conference of Anti-Narcotics Task Force NTF, ANTF, heads of states and union territories in New Delhi today. The two-day conference, which will be organized by the Narcotics Control Bureau, NCB, will serve as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. Based on the theme, United Resolve, Shared Responsibility, the conference will discuss the role of the ANTFs in attaining the envisaged vision of Narcotics Control 2026-2029.

0: விசாகப்பட்டினத்திற்கும் கோபால்பூருக்கும் இடையே 24 தேதியன்று கரையை கடக்கக்கூடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானிலை முன்னறிவிப்பு. மழை பற்றியது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் இடிமின்னலுடன் மிதமான மழை பொழிவு இருக்கக்கூடும். தமிழ்நாட்டின் மற்ற இடங்கள் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உண்டு. நாளையும் மிதமான மழை பொழிவு மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் பெய்யக்கூடும். திருவள்ளூர், சென்னை, ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை இடிமின்னலுடன் பெய்யும் வாய்ப்பு உண்டு. நாளை மறுநாள் சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் இடிமின்னலுடன் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கொடைக்கானலில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். இடிமின்னலுடன் மிதமான மழை பொழிவு எங்கும் இருக்கும். வெப்பநிலை அதிகளவு 26°C ஆகவும் குறைந்த அளவு 12°C ஆகவும் இருக்கக்கூடும். கன்னியாகுமரியில் பதிவான அதிகளவு வெப்பநிலை 32.4°C, குறைந்த அளவு வெப்பநிலை 26.3°C. சென்னைக்கும் அதன் சுற்றுப்புறங்களுக்குமான வானிலை முன்னறிவிப்பு. வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். வெப்பநிலை அதிகளவு 34°C ஆகவும் குறைந்த அளவு 25 முதல் 26°C ஆகவும் இருக்கக்கூடும். மாலையிலோ இரவிலோ சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை இடிமின்னலுடன் பெய்யக்கூடும். வானிலை அறிக்கை கேட்டீர்கள்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने ये बात आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के उद्घाटन के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है।
2: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from All these countries.
1: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
3: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। कर्मचारियों ने बैंकों में कामकाज सप्ताह में 5 दिन करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांग रखी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने उनकी एक मांग मानते हुए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत पहले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि उड़ान योजना ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: अपनी गलती स्वीकारना और सुधारना मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी है। और अब सुनिए संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो हमें पहला संदेश मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू।
3: और तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
2: ग्राम बजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया।
3: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला सुरलकर।
2: आप सबके सुंदर संदेशों के लिए एक बार फिर से हमारा आभार। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की दुनिया की कई लोक परंपराओं पर, जिनमें महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के संदेश छिपे हुए थे। चलिए आज करते हैं थोड़ा सा विषयांतर।
3: जी, थोड़ा सा विषयांतर। श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात करेंगे दुनिया के विभिन्न आविष्कारों की और जानेंगे कि कैसी परिस्थितियों में उनका आविष्कार हुआ।
2: अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सरल, सबसे लोकप्रिय और शायद सबसे प्यारा वाहन कौन सा है, चलिए मैं आपको एक मजेदार हिंट देती हूँ। ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन
3: ट्रेन ट्रेन ट्रेन, बिल्कुल सही समझा आपने श्रोताओं, वो है साइकिल। देखिए ना, ना तो पेट्रोल चाहिए, ना डीजल, ना इंजन का शोर और ना प्रदूषण।
2: जी,
3: बस दो पहिए, थोड़ा सा संतुलन और पैरों में ताकत, है ना?
2: लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी प्यारी साइकिल की कहानी है आज से लगभग 200 साल से भी अधिक पुरानी। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 200 वर्ष पीछे 1817 के जर्मनी में। बता दें कि दुनिया में आने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन थे घोड़ा और घोड़ा गाड़ी।
3: लेकिन श्रोताओं, 1815 की बात है, एक भयंकर वैश्विक घटना हुई और वो थी इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट। इसके प्रदूषण से दुनिया के कई हिस्सों में मौसम और फसलों पर बुरा असर पड़ा और इसके कारण घोड़ों के लिए चारा भी महंगा और दुर्लभ हो गया।
2: ऐसे समय में जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल वॉन ड्राइस ने सोचा, क्या ऐसा कोई वाहन बनाया जा सकता है जिसे इंसान खुद चला सके और जिसके लिए घोड़े की जरूरत न पड़े। उसने बहुत शोध किए, नवाचार किया और फिर परिणाम स्वरूप सामने आया एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन।
3: जी, एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन। पता है श्रोताओं कैसा था वो वाहन? सचमुच अजीबो गरीब। एक लकड़ी के फ्रेम में आगे पीछे दो पहिए लगा दिए गए और लकड़ी के फ्रेम के ऊपर वाले डंडे में बैठने के लिए एक छोटी सी सीट लगा दी गई।
2: न उसमें पैडल थे, न चेन, न ब्रेक। सवार उस पर बैठता और अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ता। सामने कोई आता तो चीखता, हटिए सामने से,
3: हटिए सामने से। खैर श्रोताओं, इसके द्वारा मनुष्य ने धीरे धीरे संतुलन बनाना सीखा। धीरे धीरे वो ढलानों में पांव साइकिल के फ्रेम पर रख लेता और दूर तक लुढ़कता चला जाता।
2: जी,
3: तो इसे जर्मन भाषा में कहा गया ड्राइजीन, जिसका अर्थ होता है मूविंग मशीन।
2: तो साथियों, आज की साइकिल का पहला रूप ऐसा था जिसे चलाने के लिए पैडल ही नहीं थे।
3: जरा सोचिए, साइकिल पर बैठे हैं और पैर जमीन पर, धक्का दिया और चल पड़े।
2: जी,
3: यानी एक तरह से कह सकते हैं पैदल चलते हुए वाहन चलाना, है ना मजेदार बात?
2: बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, समय आगे बढ़ा और कुछ और आविष्कारकों ने इस दोपहिया मशीन में बदलाव शुरू किए। 1860 के दशक में फ्रांस में पियरे और अर्नेस्ट मिचॉक्स ने पहिए में पैडल लगाने का महत्वपूर्ण प्रयोग किया।
3: आशुतोष, इसके बाद अब सवार को बार बार जमीन पर पैर मारने की जरूरत नहीं थी।
2: जी,
3: पैडल घुमाइए और पहिया घूमने लगता।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन इस दौर की साइकिलें आज की साइकिलों से काफी अलग थी।
2: जी,
3: इनमें आगे का पहिया बहुत बड़ा होता था और पीछे का पहिया छोटा।
2: और फिर आया वो बदलाव जिसने साइकिल को आम लोगों के लिए कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया। 1880 के दशक में विकसित हुई एक और साइकिल, इसमें दो लगभग समान आकार के पहिए थे, पैडल चेन से जुड़े थे और सवार अपेक्षाकृत नीचे बैठता था। यही वो डिजाइन था जिसने आधुनिक साइकिल की नींव को मजबूत किया।
3: तो श्रोताओं, फिर धीरे धीरे साइकिल सिर्फ एक वाहन ही नहीं रही, ये स्वतंत्रता का प्रतीक बनी।
2: जी,
3: यूरोप और अमेरिका में लोग साइकिल से काम पर जाने लगे। महिलाओं के लिए भी साइकिल ने सामाजिक स्वतंत्रता के नए रास्ते खोले। लंबी दूरी तय करना आसान हुआ और लोगों की दुनिया जैसे थोड़ी बड़ी हो गई।
2: और फिर साइकिल 19वीं

0: शताब्दी के अंतिम वर्षों में यानी 1880 से 1890 के दशक में भारत में पहुंची और धीरे धीरे शहरों और गांवों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ समय तक स्कूटर और बाइक के आने से इसकी लोकप्रियता थोड़ी जरूर कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि ये जरूरत की सवारी तो थी ही, अब सेहत के लिए भी जरूरी सवारी बन गई है।
1: जी, ये जरूरत की सवारी तो थी ही, लेकिन अब
0: सेहत के लिए जरूरी सवारी बन गई है।
1: तो साथियों, आज साइकिल कई नए नए रूपों में हमारे सामने है। अब बैटरी की मदद से लोग लंबी दूरी भी आसानी से तय कर रहे हैं।
0: जी,
1: मैं तो यही कहूँगा, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जिंदगी चलने का नाम है।
0: चलते रहिए, अपने अपनों को आवाज लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
1: तो साथियों, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी सबकी प्यारी साइकिल के बारे में। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के माध्यम से बच्चों को हमारे परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये संदेश दिया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए बच्चों को खेलना कूदना बहुत जरूरी है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम संध्या गीत। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं एक अंग्रेजी का सुंदर गीत और इसका शीर्षक है इफ यू आर हैप्पी।
2: गतिविधि आधारित इस गीत में भिन्न भिन्न शारीरिक भाव भंगिमाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। बच्चों को इस गीत के द्वारा कुछ हल्की शारीरिक गतिविधियां करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

0: Diksha, Digital Infrastructure for School Education, an initiative of the Ministry of Education, Government of India. Brought to you by the National Council of Educational Research and Training.
1: Diksha, Diksha for Empowering Education.
2: और अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है चतुर मूर्ख।
3: ये कार्यक्रम एक हास्य प्रधान कहानी पर आधारित है जिसमें एक मूर्ख को बुद्धिमान समझ लिया जाता है और जब धीरे धीरे उसकी कलाई खुलने लगती है तो लोग समझ जाते हैं कि किसी के बारे में कोई राय तुरंत नहीं बनानी चाहिए।
2: चतुर मूर्ख।
4: तीन मूर्ख थे, वे कहीं जा रहे थे।

रास्ते में ही रात हो गई। वे पास के एक गांव में रुक गए। उन्हें भूख भी लगी थी। मांगने पर उन्हें गांव में एक घर से चावल मिला, दूसरे घर से दूध मिला, तीसरे घर से चीनी भी मिल गई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई। भर पेट खाने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। बची हुई खीर कौन खाएगा, इस बात पर बहस छिड़ गई। बहस के बाद तय हुआ कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा। तीनों लेट गए।

0: वे आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। दो तो जल्दी सो गए। तीसरे को नींद न आई। वो सोचता रहा।
1: कौन सा सपना देखूं जिससे खीर मिले।
0: धीरे धीरे सवेरा होने लगा। ना तो वो सोया और ना ही उसने कोई सपना देखा, लेकिन वो चतुर था। वो चुपके से उठा और सारी खीर खा गया। खीर खा लेने पर उसे झटपट नींद आ गई। दोनों मूर्ख बड़े सवेरे ही जाग गए। उनके दिमाग में सपने की बात ही बार बार आ रही थी। उन्होंने तीसरे को भी जगाया।
2: अरे उठो, अरे उठो, उठो, अरे उठो,
3: आए उठो, उठो,
2: अरे उठो।
0: हाथ मुंह धोकर वे एक दूसरे से सपनों के बारे में पूछने लगे। पहले ने कहा,
2: आहा, मैं तो सपने में स्वर्ग पहुंच गया था। वहां पर देवता मेरी सेवा कर रहे थे।
4: अच्छा?
2: हाँ। परियां परियां नाच रही थी। और हाँ, हाँ, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें थी। वाह वाह वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आ रहा था। वाह वाह वाह वाह।
0: दूसरे ने कहा,
4: मैं तो सपने में गढ़वाल का राजा।

0: आकर भी मैं दरबार में सिंहासन पर बैठा था।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: बगल में महारानी थी। लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। बड़ा अच्छा दृश्य था।
2: अब तीसरे की बारी आई। उसने तो कोई सपना देखा नहीं था। ऊपर से खीर भी चट कर गया था। पहले तो वो घबराया, फिर कुछ सोच कर बोला,
1: मेरे सपने को मत पूछो। मेरे सपने में एक काला कलूटा भूत आया।
3: भूत?
1: उसका बहुत बड़ा शरीर था, चेहरा डरावना था। आते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और डंडे से पीटने लगा।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: जापान का शहर नागोया 20वें एशियन गेम्स की मेजबानी करने के अलावा दो चीजों के लिए मशहूर है। पहले सामुराई, यानी जापान के वो पारंपरिक योद्धा जिनके शौर्य, शक्ति और संघर्ष की कहानियां इतिहास में दर्ज है, और आधुनिक जमाने में नागोया की विश्व प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहां सटीकता के साथ हर नई तकनीक नई संभावनाओं का रास्ता खोल देती है। शौर्य, संघर्ष, शक्ति, सटीकता और संभावनाएं। आज मंगलवार 22 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में ये पांचों रंग दिखे। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी के मैदान में भारत ने अपनी शक्ति का बखान किया, तो वहीं आज बॉक्सिंग रिंग में भी हमारे मुक्केबाजों ने अपना शौर्य दिखाया। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और सॉफ्ट टेनिस में सफलता और संघर्ष का मिला जुला खेल रहा। स्विमिंग और शूटिंग, जहां सेकंड के कुछ हिस्से और कुछ मिलीमीटर जैसी रेजर थिन मार्जिन्स का सवाल है, वहां भारतीय खिलाड़ियों की सटीकता की परीक्षा हुई। तो एक्वेस्ट्रिन, फेंसिंग, ई स्पोर्ट्स, सेपेक टकरो और वूशू जैसे खेल जो अभी भी भारत में अपनी पहचान तलाश रहे हैं, वहां नई संभावनाओं के द्वार खुले। पूरे दिन का लेखा जोखा ले मैं दर्पंती क्या आपके समक्ष मौजूद हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत महिला क्रिकेट की, जिसने भारत को दिलाया है एशियन गेम्स 2026 में उसका पहला गोल्ड। हरमनप्रीत कौर की महिला क्रिकेट टीम से सिर्फ पोडियम फिनिश की नहीं, गोल्ड मेडल की ही उम्मीद थी। एनीथिंग लेस वुड हैव बीन एन अपसेट। लेकिन दबदबा बनाने की इस अपेक्षा के साथ उम्मीदों का वजन भी आता है, और उसके साथ आता है दबाव, और कई बार इस दबाव में अच्छे खासे खिलाड़ी बिखर जाते हैं। लेकिन आज शेफाली वर्मा और स्मृति मानधना ने कहा, आज नहीं। दोनों की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। 99 रन की सलामी साझेदारी, जिसने नींव रखी एक विशाल फर्स्ट इनिंग स्कोर की। जहां शेफाली ताबड़तोड़ 48 रन बनाने के बाद आउट हो गई, तो वहीं उपकप्तान मानधना ने अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर आई ऋचा घोष, जिन्होंने 222 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 49 रन बनाए और भारत ने श्रीलंका को 217 का टारगेट दिया। श्रीलंकाई पारी शुरुआत में ही लड़खड़ाने लगी। बल्ले से अपने जोहर दिखाने के बाद शेफाली ने गेंद से भी दो विकेट लेने में योगदान दिया। अंततः भारत ने 147 रन के बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीता।
2: मेंस कबड्डी के ग्रुप ए मुकाबले में इंडिया ने अपने विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखते हुए दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की।

0: डिफेंडिंग चैंपियंस ने पूरे मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखी और ग्रुप ए में अपनी स्थिति मजबूत की। इंडिया ने शुरुआत से ही अटैक और डिफेंस दोनों में दबाव बनाया। हाफ टाइम तक इंडिया 34-14 से आगे था और उसने दो बार प्रतिद्वंदी को ऑल आउट किया। दूसरे हाफ में भी अर्जुन देशवाल, देवांग, अयान, राहुल और पवन कुमार जैसे रेडर्स ने स्कोरिंग जारी रखी, जबकि जयदीप, सुमित और सुनील कुमार ने डिफेंस में इंडिया की पकड़ बनाए रखी। आखिरकार इंडिया ने दूसरे हाफ में 29 पॉइंट जोड़ते हुए मुकाबला 63-31 से अपने नाम किया। पूरे मैच में इंडिया ने 3 ऑल आउट, 17 बोनस पॉइंट और 2 सुपर टैकल पॉइंट्स हासिल किए। दक्षिण कोरिया की तरफ से कैप्टन ली जांगकुन ने सुपर 10 जरूर दर्ज किया, लेकिन इंडियन टीम की लगातार अटैकिंग और डिफेंसिव प्रेशर के सामने कोरिया वापसी नहीं कर सका। इंडिया ने इस तरह ग्रुप ए में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब इंडियन मेंस टीम का अगला मुकाबला 23 सितम्बर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा, जहाँ टीम जीत की इस लय को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगी।
1: हॉकी की भी यही कहानी है। वहाँ गोल्ड मेडल जीतना केवल शक्ति दिखाने और साख के लिए जरूरी नहीं, बल्कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ घटा आज हॉकी के मैदान पर, आइए सुनते हैं।
0: मेंस हॉकी में इंडिया ने आज अपने अटैकिंग अंदाज का शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 16-1 से करारी शिकस्त दी। इंडिया की हॉकी टीम से इसी तरह के हेवी परफॉर्मेंस की उम्मीद हमेशा रहती है और आज मैदान पर टीम ने उसी एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह जस्टिफाई किया। पूल ए में ये इंडिया की लगातार दूसरी जीत है और दो मैचेस में इंडिया अब तक 29 गोल कर चुका है। इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और हाफ टाइम तक 8-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। दूसरे हाफ में भी अटैकिंग मोमेंटम बरकरार रहा और इंडिया ने कुल 16 गोल दागे। इस शानदार स्कोरिंग परफॉर्मेंस में जुगराज सिंह ने 4 गोल्स किए, जबकि अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने भी 3-3 गोल्स के साथ हैट्रिक्स पूरी करी। और इंडिया के डिफेंसिव स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे मुकाबले में श्रीलंका को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला। यानी इंडिया ने सिर्फ गोल्स के सामने नहीं, बल्कि अपने डिफेंस में भी श्रीलंका पर लगातार दबाव बनाए रखा। श्रीलंका के लिए सुरेश रत्नायके ने 50वें मिनट में एकमात्र गोल किया, जो एशियन गेम्स में इंडिया के खिलाफ श्रीलंका का पहला गोल भी रहा। अब इंडिया का अगला पूल ए मुकाबला 24 सितंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ होगा।
1: अब चलते हैं बॉक्सिंग रिंग की तरफ, जहां आज चुनौती कड़ी थी। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय मुक्केबाजों से जो उम्मीदें हैं, उनका वजन भी बढ़ गया है। लेकिन दबाव में भी दमखम दिखाते हुए इंडियन बॉक्सर्स ने अपना वर्चस्व कायम रखा। सबसे पहले महिलाओं की 51 किलोग्राम की कैटेगरी, जहां साक्षी चौधरी के सामने थी पेरिस ओलंपिक्स की मेडलिस्ट फिलीपींस की आयरा विलिगास। लेकिन साक्षी ने तो मानो प्रतिद्वंदी को मौका ही नहीं दिया, शुरुआत से ही बाउट को डोमिनेट किया और अंततः सर्वसम्मति से मुकाबला जीत प्री क्वार्टर्स में अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट वॉज जादुमणि सिंह इन द मेन्स 55 किलोग्राम कैटेगरी। ही वॉज अप अगेंस्ट नेपाल्स चंद्र बहादुर थापा एंड द सेम स्टोरी रिपीटेड। जादुमणि डोमिनेटेड द फाइट एंड इवेंचुअली वॉज हेल्ड एज द बेटर बॉक्सर ऑन ऑल 5 कार्ड्स। He won his bout by a unanimous decision and made it to the pre-quarterfinals. चलिए अब बात करते हैं नई संभावनाओं की। भारत का एक और मेडल सुनिश्चित हो चुका है वुशु में। वुशु चाइनीज मार्शल आर्ट्स कुंगफू से उत्पन्न हुआ एक खेल है और इसके सांडा इवेंट में दो फाइटर्स आमने सामने होकर एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश करते हैं। भारत की रोशबीना देवी ने इस इवेंट में 2018 में कांस्य पदक और 2023 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। 2026 में भी उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश पा कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर लिया है। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि सेमीफाइनल जीत वो सिल्वर और हो सके तो गोल्ड पर भी निशाना साधेंगी। इसी इवेंट में पुरुषों की 56 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के आर्यन ने भी उम्मीदें जगाई थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल्स में उज्बेकिस्तान के सेडुला अब्दुराशिटोव के खिलाफ उनको हार मिली। वुशु में ही एक परफॉर्मेंस इवेंट भी होता है जिसको नानकुआन कहा जाता है। उसमें आज भारत की लांगलिन टोम्बी देवी शिरकत कर रही थी। हालांकि 10 खिलाड़ियों में उन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया और मेडल की रेस से बाहर हो गई। फाइट स्पोर्ट्स की ही बात हो रही है तो जापान में ही उत्पन्न हुआ कराटे कैसे पीछे रह सकता है।
0: जी हाँ, कराटे में इंडिया के लिए आज

0: का दिन मेडल के बेहद करीब पहुंचकर खत्म हुआ। सबसे पहले पुरुष कुमीते 84 किलोग्राम में चेतन भट्ट ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। चेतन ने पहले सेमीफाइनल में जॉर्डन के मोहम्मद अल जफारी का सामना किया, लेकिन 0-8 से हार गए। इस रिजल्ट के बाद उन्हें ब्रॉन्ज मेडल बाउट में जगह मिली। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने एक एक यूको स्कोर किया, जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया, जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। लेकिन इसके बाद फैसला सेंशू से हुआ। सेंशू उस एथलीट को मिलता है जिसने ओपोनेंट के स्कोर करने से पहले सबसे पहला अनकंटेस्टेड पॉइंट हासिल किया हो। चुंग ने पहला स्कोर किया था, इसलिए टाई होने पर सेंशू के आधार पर उन्हें विनर घोषित किया गया और चेतन ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। अब महिला कुमीते 55 किलो की कैटेगरी में अलीशा चौधरी को राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया की चौक एस्त्री सानिस त्रयानी से 1-6 से हार मिली। अलीशा ने 1 यूको स्कोर किया, जबकि सानिस त्रयानी ने 3 यूको और 1 इपॉन के जरिए 6 पॉइंट्स हासिल किए। अलीशा का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 16 में समाप्त हुआ। इस तरह कराटे में इंडिया के दोनों एथलीट्स मेडल कंटेंशन में पहुंचे, लेकिन चेतन भट्ट का बेहद करीबी 1-1 ब्रॉन्ज मेडल बाउट और सेंचू का फैसला आज के मुकाबलों का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा रहा।
1: संघर्ष और सफलता का ये मिला जुला खेल बैडमिंटन कोर्ट पर भी देखने को मिला। क्वार्टर फाइनल में जहां महिलाओं की टीम को हार मिली, तो वहीं पुरुषों ने जापान की मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच अपने लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। डिटेल्स बता रही हैं साक्षी मांडवाल।
2: इन बैडमिंटन द इंडियन वुमेन्स टीम कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर अ 1-3 लॉस टू जापान इन द क्वार्टर फाइनल्स। द फर्स्ट मैच वाज प्लेड बिटवीन पीवी सिंधु and Akane Yamaguchi of Japan, where PV Sindhu, despite having won the first game, went on to lose the next two to Akane Yamaguchi. In the next match, Unnati Huda of India lost to Tomoka Miyazaki. The third match was played between Trisa Jolly and Gayatri Gopichand of India, who beat Yuki Fukushima and Mayu Matsumoto of Japan. Yet, this victory was not enough for India to be able to defeat Japan in totality. Because the last match that was played between Tanvi Sharma of India and Nozomi Okuhara of Japan, we saw Tanvi Sharma losing to her Japanese opponent. We now move on towards the men's team event in badminton quarterfinals. The first match in this was played between Lakshya Sen of India, who beat Japan's Kodai Naraoka in a very thrilling 66-minute encounter to give India a 1-0 lead in the men's team quarterfinal tie. This victory thereby set the momentum and pace for the next shuttlers who were to represent India in the second match. Because in that match also we saw India's Chirag Shetty and Satwik Ranki Reddy up against Japan's Hoki Takuro and Kobayashi, whereby they pulled out a brilliant victory from the hands of Japan by defeating them in straight games to win the match 2-0 in favor of India.
1: It was a mixed bag overall in racket sports. In table tennis, the men's team lost to South Korea, while the women defeated Thailand and made it to the quarterfinals. However, their North Korea came in their way.
2: Let's now talk about table tennis. Indian women's table tennis team beat Thailand 3-2 in a hard-fought match at the Asian Games 2026, advancing to the quarterfinals. In a dramatic turnaround in table tennis, India's Srija Akula conceded the final three games after taking a 2-0 lead early on. In the second game, India's Yashaswini Ghorpade win against Suthasini Savitabu to keep India's hopes alive. The Achitale went down in another five-setter, losing to Jinepa Savitabut of Thailand. In the fourth game, Yashaswini Ghorpade defeated Orawan Paranang, and finally Srija Akula won a crucial match against Suthasini, help India secure the overall victory. The final scoreline read 3-2 in favour of India.
1: टीटी और बैडमिंटन के अलावा एक और रैकेट स्पोर्ट एशियन गेम्स का हिस्सा है, जहां पर भारत की पदक की उम्मीदें हैं। हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट टेनिस की।
2: आद्या तिवारी सफर्ड 1-4 डिफीट टू थाईलैंड्स अलीशा जिलगर इन द वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी मैच। लेटर इन द डे इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जैमीना टुक ऑन अरेन हुसैन इन मेन्स सिंगल्स ग्रुप डी क्लैश, वेयर इंडिया बीट पाकिस्तान। जैमीना सिंपली वॉज द बेटर प्लेयर अगेंस्ट पाकिस्तान।

0: Ryan Hussain. The Indian took the match away from him completely, finishing the match with a scoreline of 4-2, 4-0, 4-2, 4-0, thereby completely outplaying his opponent.
1: इसके बाद रुख करते हैं फेंसिंग का।
2: फेंसिंग यानी तलवारबाजी में इंडिया के लिए दिन मिला जुला रहा, लेकिन वुमेन्स ईपी में तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 16 तक पहुंचकर सबसे लंबा सफर तय किया। चारों इंडियन फेंसर्स ने पहले अपने रिस्पेक्टिव पूल बाउट्स के जरिए नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 से आगे का मुकाबला हुआ। सबसे पहले वुमेन्स ईपी तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 32 में थाईलैंड की नाटपपात सांगनियो को 15-10 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। वहां उनका सामना हुआ साउथ कोरिया की रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सोंग सेरा से। तनिक्षा ने बड़ी चुनौती दी, लेकिन 9-15 से हार कर उनका कैंपेन समाप्त हुआ। यह भी खास है कि तनिक्षा इस साल सीनियर वुमेन्स ईपी में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीत चुकी हैं। इसी कैटेगरी में मितवा चौधरी का मुकाबला चाइना की योंग रिंग वेन से बेहद करीबी रहा। मितवा ने तीनों पीरियड्स में फाइट जारी रखी, लेकिन अंत में सिर्फ एक पॉइंट के अंतर से 14-15 से हार गया। अब अगर चले मेंस फॉइल स्पर्धा की तरफ, हिमांश सिंह और सचिन दोनों ने पूल स्टेज में 3 जीत और 2 हार के साथ राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई थी। राउंड ऑफ 32 में हिमांश ने कजाकिस्तान के गलीम नूरुमोव के खिलाफ पहले पीरियड में 6-5 की बढ़त बनाई, लेकिन नूरुमोव ने वापसी करते हुए मुकाबला 15-9 से जीत लिया। वहीं सचिन को कजाकिस्तान के टिमोफी ने भी 15-9 से हराया। इस तरह मेंस फॉइल में दोनों इंडियन फेंसर्स का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 32 में हुआ समाप्त।
1: जहां इन खेलों में मिला जुला रिजल्ट रहा, तो वहीं स्विमिंग और शूटिंग में पदक आते आते रह गया, और बता रहे हैं अभिनव।
3: Aryan Nehra was in action for India in the swimming competition in the men's 1500 meter freestyle final B. Aryan tried his best, strived hard, but unfortunately finished fourth and came so close in that men's competition. The Indian men's 4x100 meter medley relay team comprised of Utkarsh Patil, Danush Suresh, Benedict Beniston and Akash Mane. The men's team finished 7th and then qualified for the final, and there were huge expectations that they would show some outstanding performances in the pool. However, when it came to the final, the competition was fierce. It was really tough. While the Indian swimmers strived hard, they unfortunately finished last and 8th in the medley relay final. It was really tough competition for India and it was a great experience for them, while China once again took the gold in the swimming pool.
1: फिर शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल हासिल कर लेने वाली एला वलेन वलारीवन के पास मौका था मिक्स्ड टीम में भी पार्थ माने के साथ पदक पर निशाना साधने का, पर वो चौथे पायदान पर रही।
3: द इंडियन शूटिंग पेयर ऑफ एला वलेन वलारीवन एंड पार्थ माने फिनिश्ड फोर्थ इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल एट द एशियन गेम्स 26 in Aichi Nagoya, Japan. In the qualification round, Valarivan and Parth Mane shot a strong combined score of 634.6, finishing second to qualify for the medal round. However, in the medal round, the duo scored 376.3 in the final, maintaining the fourth position from the opening series and missed out on a podium finish. And as usual, as we have seen in the Asian Games, China won the gold medal with a world record score in the event. The qualification round score of the Indian athletes was the best Asian Games record. Moving on to the men's and women's skeet competition. Talking about the men's team first, after 100 shots, the Indian men saw contrasting fortunes as the individual qualification rounds progressed. A.S. Naruka is currently in second place with a total of 96 points so far, putting himself in prime position to qualify for the individual finals. Miraj Ahmed Khan is positioned further down the order at 23rd place with a total of 91 points. While Bhavdev Singh Gill is ranked 35th following a tough run of series with a total of 86. Now when we talk about the skeet men's team finals, India stood at the end of day 2 in the 5th position with a total of 273 points. Meanwhile in the women's skeet standings, the Indian women remain in contention for the finals, led by a strong push from Raisa Dhillon. Raisa moved up significantly to 5th place in the individual standings with a total of 92 points. Parinaz Dhaliwal was positioned just outside the top tier at 9th place with a total of 89 points, while Maheshwari Chauhan currently sits at 16th place with 85 points. The Indian women's team are in third place with 266 points. A reminder that there are 125 shots in this event, and just 25 shots tomorrow will decide the team standing for both India men's and women's.

0: Simmons. कुछ और खेल भी आज चर्चा का केंद्र रहे, उसके लिए चलते हैं विदुषी की तरफ।
1: आइए अन्य खेलों में सबसे पहले शुरू करते हैं सेपेक टेक रॉ में, जहां इंडिया के लिए आज का मुकाबला टफ रहा। मेंस टीम रीगू के ग्रुप बी में इंडिया को मलेशिया के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चलते हैं इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में इंडिया के प्रदर्शन के ऊपर, जहां इवेंटिंग टीम कैंपेन आज 7th पोजीशन के साथ खत्म हुआ है। टीम ड्रेसेज में इंडिया ने 112.40 पेनल्टी पॉइंट्स के साथ 7th प्लेस हासिल करा है। टीम जंपिंग में भी इंडिया का कैंपेन एलिमिनेशन के साथ समाप्त हुआ और इस तरह टीम इवेंट में इंडिया मेडल कंटेंशन से बाहर रहा, लेकिन आशीष लिमाय का 6th प्लेस फिनिश आज इंडियन इक्वेस्ट्रियन कंटिंजेंट के लिए सबसे अहम प्रदर्शन रहा। ई स्पोर्ट्स के फुटबॉल में इंडिया का कैंपेन भी खत्म हो गया, जिनमें साहू और दानियाल शकील पटेल ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 0-0 ड्रॉ खेला, जबकि मंगोलिया के खिलाफ स्केड्यूल्ड मैच में ओपोनेंट के DNS रहने से इंडिया को वॉकओवर मिला। पॉइंट्स बराबर होने के बावजूद टाई ब्रेक में उज्बेकिस्तान आगे निकल गया और इंडिया नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गया। मेडल टैली की बात करें तो इंडिया इस समय 8th पोजीशन पर है, जहां उसके खाते में कुल 7 मेडल्स हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। मेडल टैली में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पहले स्थान पर है, जापान दूसरे एंड कोरिया तीसरे स्थान पर है।
0: कल एक बार फिर इसी समय हम पूरे दिन का हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। एडिटर स्वाति कपूर और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं दर्पण टिकिया।
2: நேரம் 10:20.
3: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 6th संस्करण में प्रस्तुत है वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा और आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के रूप में यानी पब्लिक सर्विस में 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बहुत कई ऐसे काम किए जिससे आम लोगों का बहुत फायदा हुआ और खास तौर पे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में। पिछले एक दशक में इसे एक व्यापक जन अभियान का रूप मिला है। 2014 के बाद से खास करके वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसी बारे में आज हम अपनी विशेष सीरीज जन सेवा से देश सेवा में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं रमेश कुमार अरोड़ा, जो पूर्व GM हैं, यानी वो फॉर्मर जनरल मैनेजर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत आपका अरोड़ा साहब।
5: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
4: और हमारे साथ हैं शिशिर सिन्हा, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं। शिशिर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
6: नमस्कार, धन्यवाद।
4: तो जैसा कि हमने अपने इंट्रो में कहा कि पिछले 25 वर्षों में जन सेवा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मुख्यमंत्रित्व काल में और फिर पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के तौर पर आम लोगों को देश की कई बड़ी सामाजिक हो या आर्थिक हो, वित्तीय हो, ऐसी परियोजनाओं से योजनाओं से जोड़कर वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। अरोड़ा साहब, आपसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2014 के बाद से वित्तीय समावेशन की दिशा में और दृष्टिकोण में क्या कुछ प्रमुख खास बदलाव आपको देखने को मिले हैं, जिसका आप उल्लेख करना चाहेंगे?
5: सबसे बढ़िया जो वित्तीय समावेशन की बात है, इसका मतलब ये है कि हर सिटीजन का पास एक बैंक का अकाउंट हो, जिसमें उसे क्रेडिट की सुविधा भी दी जाए, इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाए, पेंशन की सुविधा भी दी जाए और डिजिटल ट्रांजेक्शन की भी पेमेंट की उसकी सुविधा दी जाए। यानी कि हर एक सिटीजन के पास एक यूजफुल और कन्वीनियंट एक अकाउंट हो, जिससे कि वो सारी फैसिलिटीज को कर सके। जहां तक 2014 के बाद की बात है, आप सब जानते ही हैं कि जनधन खातों की शुरुआत जो है 2014 से लार्ज स्केल पर हुई है, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इसका बात कही थी। और ये हमारे एक बैंकिंग के लिए और सभी सिटीजन के लिए खाता खोलने की दिशा में एक बहुत बड़ा काम हुआ, जिसमें 0 बैलेंस के ऊपर सबके अकाउंट खोले गए, साथ में रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा दी गई, साथ में एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख का दिया गया और लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000 रुपए का, जो 15/8/14 से 31/1/2015 तक खाते खुले थे उनमें 30,000 रुपए का एलिजिबल अकाउंट्स में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया गया। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक नई स्कीम साथ में दी गई, जनधन खातों में 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर वो 6 महीने अगर एक्टिव अकाउंट

0: रहता है, सही अकाउंट चलता है, तो उसमें वो भी फैसिलिटी है और साथ में पेंशन और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इसकी भी सुविधा है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सबसे बड़ा जो फायदा एक हुआ है, जो गवर्नमेंट की डिफरेंट हमारी स्कीम्स हैं, जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में जाए, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बहुत बड़ा ये फायदा हुआ है ये जनधन खाते खुलने से।
1: बिल्कुल शिशिर, आपसे मेरा सवाल ये है, केवल बैंक खाता खोलना और व्यक्ति को वास्तव में वित्तीय व्यवस्था में शामिल करना दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, आपको क्या लगता है आज हम किस चरण में हैं?
2: जनधन योजना में एक चुकी कंप्यूटर और डिजिटल माध्यम

0: वास्तव में वित्तीय व्यवस्था में शामिल करना दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। आपको क्या लगता है आज हम किस चरण में हैं?
1: जनधन योजना में एक चूंकि कंप्यूटर और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल हुआ तो बैंक उनके घर पे आ गया। देखिए वित्तीय समावेशन की बात हम क्यों कर रहे हैं, वित्तीय समावेशन केवल ये नहीं कि आपको हमने एक बैंकिंग सुविधा दी है या हमने आपको एक बीमा की सुविधा दी है या पेंशन की सुविधा दी है। दरअसल वित्तीय समावेशन अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम है। क्योंकि अगर आप देखिए कि एक व्यक्ति जो कि बैंक में खाता खुलवाता है, जैसा कि अरोड़ा साहब ने कहा कि उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। अब अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। ये एक तरीके का आपके लिए कर्ज है। आप सामान्य तौर पर जब कर्ज लेने जाते हैं तो तमाम तरह के प्रावधान है जो देखे जाते हैं कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आपका वेतन क्या है, आप क्या इस स्थिति में है कि नहीं, आप कर्ज का पुनर्भुगतान कर पाएंगे। वहां पर एक व्यक्ति का खाता खुला हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना में, उसमें 6 महीने का परफॉर्मेंस देखना है कि वो 6 महीने में उसकी जो निकासी हुई या उसका जो जमा हुआ वो सही तरीके से है कि नहीं, फिर उसके आधार पर उसको 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट दिया गया। अब आप कहेंगे 10,000 रुपए में किसी के लिए क्या होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि जिस देश में एक बड़ी आबादी के पास जिसे कहा जाए कि 10,000 रुपया उसका वेतन होता हो, उसे 10,000 रुपए का एक कर्ज मिले जिससे कि वो अपने व्यक्तिगत तौर के अलावा अगर वो किसी उत्पादक कार्यों में लगा सके, छोटे मोटे कार्य कर रहा है उसमें वो लगा सके, तो कितना फायदा होगा। तो मेरे लिए वित्तीय समावेशन का मतलब एक व्यक्ति का अनौपचारीकरण से औपचारीकरण में आना है, अर्थव्यवस्था का विस्तार होना है, सकल घरेलू उत्पाद व्यवस्था बेहतर होनी है, और सबसे बड़ी बात है कि उसको एक ऐसी सुरक्षा दी जाती है वित्तीय सुरक्षा में जहां पर संगठित क्षेत्र से उसको मदद मिलती है। अब देखिए जनधन में एक और बात आपको गौर करने की है, जनधन से जन सुरक्षा की तरफ हम है। हमने केवल जनधन की बात नहीं की है, जन का धन आ गया
0: और सुरक्षा
1: और उसके बाद सुरक्षा देना, तो चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हो या फिर अटल पेंशन योजना हो, ये तीनों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये एक सार्वजनिक तथ्य है, इसमें मैं कोई अलग से फिगर्स नहीं ला रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति में आपको एक पेंशन की सुविधा मिल जाए, आपको कहा जाए कि आप मामूली रकम देकर के दुर्घटना बीमा करा सकते हैं, मामूली रकम देकर के जीवन बीमा आप करा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा की धारणा मजबूत होती है। मेरे लिए एक व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय समावेशन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को बैंक से जोड़ना नहीं है, बल्कि उसके लिए एक वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय व्यवस्था में मजबूती और अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है।
0: बिल्कुल अरोड़ा साहब, जैसा बताया शिशिर जी ने, बहुत बारीकी से इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि 10,000 रुपए की रकम का ओवरड्राफ्ट मिलना, यानी किसी को बड़े आसान शर्तों पर बिना किसी कोलैटरल के कर्ज मिल जाना। खास बात यह है कि लोग पेपर देने से, कोई कोलैटरल रखने से घबराते हैं, नहीं होता है उनके पास, मिल जाना। क्योंकि मेरे पास ऐसे उदाहरण है, सब्जी बेचने वाले जिन्हें सुबह का पैसा चाहिए कि वो मंडी से जाकर सब्जी खरीदे या खेतों से जाकर खरीदे और शाम तक बेच दें, उन्हें सुबह 5,000 रुपए भी मिल गए तो वो शाम तक वो 7,000-7,500 रुपए बना लेते हैं, उनका पहिया जो है जीवन का वो चल जाता है। और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हमने देखे हैं। तो शशिर आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि 10,000 रुपए की भी रकम अगर किसी को मिल रही है तो न सिर्फ उसका बल्कि उसके पूरे परिवार का पहिया चल पड़ता है और उससे एक परिवार की शिक्षा दीक्षा हो जाती है। और यही एक जो स्तंभ बन रहे हैं शायद विकसित भारत 2047 के स्तंभों में बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। अरोड़ा साहब, एक सवाल आपसे भी है और यही सवाल शिशिर मैं आपसे भी फिर करने वाला हूं कि हम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, यानी जनधन खाते जिसकी हमने अभी चर्चा की, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, अब ये तीनों हो गए हैं। और भारत के डिजिटल और वित्तीय समावेशन का जो मॉडल रहा है इसमें जैम ट्रिनिटी का बहुत महत्वपूर्ण एक आधार रहा है। इस व्यवस्था ने सरकार और लाभार्थी जो एक आम नागरिक है उसके बीच के संबंधों को कैसे बदला है और कैसे एक आम आदमी सशक्त हुआ है, खास करके महिलाएं?
2: जैसे आपने जैम की बात कही, जैम का है जय से जनधन, ए से आधार और एम से मोबाइल, यानी कि इन तीनों को कंबाइन करके सबसे बड़ा इसका जो फायदा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे मैंने पहले बात की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं खाते में जानी है उसके लिए विदाउट मिडिल मैन ये खाते में कैसे जैम के थ्रू जाए, यानी जनधन खाता होना चाहिए सबसे पहला बात, जिसमें मैंने जैसे पहले बताया जीरो बैलेंस के ऊपर भी खुल सकता है। उसके बाद आधार आइडेंटिटी के लिए कि ये पार्टिकुलर पर्सन यही है, उसकी आइडेंटिटी दे अगर फिक्स करनी है तो आधार के थ्रू है, और मोबाइल से कल को फ्रॉड ना हो जाए। जाए, ओटीपी वगैरह उसकी जो कम्युनिकेशन है वो उसके थ्रू मोबाइल है। यानी कि जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बात आती है उसको जैम जनधन खाता हो, आधार उसके लिंक होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए, इसके थ्रू वो डायरेक्ट जो उसके खाते में पैसा जमा कर दिया जाता है।

0: तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डिजिटल फाइनेंशियल के ऊपर ये जैम जो है बहुत बड़ा एक कार्य कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। अब जहां तक बात है इसमें कि कैसे काम करता है, तो जनधन में सबसे बेनिफिशियरी का अकाउंट खुल गया, उसके बाद आधार से उसका लिंक हो गया और मोबाइल नंबर के थ्रू उसके पास जो SMS आएंगे, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो हो गए, तो इस हिसाब से उसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट पूरा मिल जाता है और कोई मिडिलमैन नहीं, कोई उसमें ट्रांसपेरेंसी के थ्रू के काम होता है।
1: बिल्कुल शिशिर, यही सवाल आपसे भी है, लेकिन आपसे मैं ये भी खास तौर पर जानना चाहूंगा कि महिलाओं को किस तरीके से जैम ने सशक्त बनाया है और पारदर्शी सिस्टम को बनाया है, क्योंकि आम तौर पर होता क्या था कि उन्हें अगर किसी रकम कोई मिलती थी, चाहे कहीं से मिले, सरकार के इससे मिले, कैश होता था, तो गिद्ध दृष्टि जो होती थी, घरों में भी कई लोगों की होती थी, कई बार उनके पैसे गुम हो जाते थे, ठीक से गिन नहीं पाती थी, कहीं रख दिया, भूल गए, बच्चों ने चुरा लिया, तो बाहर से भी सुरक्षा, अंदर से भी सुरक्षा और सामने पारदर्शिता अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना, इस पर आपकी क्या टिप्पणी?
2: पहले अगर आप जैम की अवधारणा देखिए, मुझे याद है कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने आर्थिक सर्वेक्षण जो 2015-16 का दिया था, उसका शीर्षक था उस चैप्टर का कि कैसे लोगों के आंसू पूछे जाए, और उसी में, उसी शीर्षक के तले अध्याय में जैम का जिक्र किया गया था। तो पहली बार जब जैम शब्द आया तो हम लोग थोड़े से सोचे कि जैम होता क्या है भाई, हम तो ब्रेड पे लगा के खाने वाले की बात कर रहे हैं। फिर जब मुझे उसके ठीक एक दिन के बाद जब बजट में इस बात का जिक्र किया गया कि हम जैम ट्रिनिटी के जरिए, यानी कि जनधन आधार और मोबाइल के जरिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करेंगे, अब देखिए आपने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है, जनधन खाते में एक बड़ी संख्या किसकी? महिलाओं की है, और महिलाएं भी कौन जो ग्रामीण इलाके में हैं। तो अब देखिए देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है वो पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। अब वहां पर जो कुछ भी उनको भुगतान होता है, चाहे वो बीबीजी रामजी के जरिए हो, चाहे वो किसी और योजना के जरिए हो, उस योजना का पैसा जो उनके खाते में जा रहा है, बीच में कोई आदमी शामिल नहीं है। तो आप ये भी याद करें कि एक पूर्व प्रधानमंत्री जी का बयान था कि रुपए का 15 पैसा ही गांव तक पहुंचता है। अब उसमें से अगर एक ग्रामीण महिला के पास अगर बैंक खाता नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो 15 पैसे भी पहुंचेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास खाता है और उस खाते के जरिए आप लेन देन करते हैं, वो सशक्त हैं, क्योंकि वहां पर वो श्रम शक्ति में बड़ी भागीदारी कर रही हैं। लेकिन हमको आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है तो वहां पर जनधन खाते में उनकी मदद हो रही है, और जनधन खाता केवल आपके लिए पैसा लेन देन का माध्यम नहीं है, बल्कि वहां से जन सुरक्षा का रास्ता खुलता है, ये आपके सशक्तिकरण का दूसरा रास्ता है। आपको बीमा सुरक्षा मिलती है, आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, आपके पास एक सबसे बड़ी बात है कि रुपे कार्ड मिल रहा है, जो कि अमूमन क्या होता है कि हम लोग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने के नाते हम सोचते हैं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, हमारे पास कार्ड नहीं है। कार्ड कहीं ना कहीं हमारे एक महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है। एक महिला जो ग्रामीण इलाके में काम करे, उसको हमने कार्ड दिया, अब उस कार्ड के जरिए वो कहीं भी जाकर के खरीदारी कर सकती है, क्या ये सशक्तिकरण नहीं है? तो पहली श्रम सशक्तिकरण हुआ, फिर उसके बाद उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, फिर उनका जो विश्वास है वो और बेहतर होगा, तो यही तो सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। और मुझे लगता है कि जनधन एक पहला कदम था, और जनधन के बाद अब जो दूसरा कदम है जिस पे काफी अच्छे से बातचीत भी हुई है, चर्चा भी हुई है, काम भी हो रहा है, वो है वित्तीय साक्षरता का। और मुझे लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिलाओं की हम बात क्यों करें, पुरुषों में भी, महिलाओं और पुरुषों के दोनों के सशक्तिकरण में जो वित्तीय साक्षरता की भूमिका होगी वो कम नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि महिलाएं आर्थिक तौर पर जितनी ज्यादा कहते ना कि तर्क संगत फैसले लेती हैं, वो शायद पुरुष नहीं लेते हैं। हम तीन पुरुष यहाँ बैठ करके इस बात पे सहमति जता सकते हैं कि महिलाएं आर्थिक रूप से ज्यादा अच्छी सोच रखती हैं पुरुषों के मुकाबले में।
1: मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक रखता हूँ। अच्छी सोच और समझ के साथ साथ वो दूर दृष्टा भी होती हैं वित्तीय मामलों में, और भविष्य भी सुरक्षित रखना चाहती हैं अपने परिवार का। और जब एक परिवार का भविष्य सुरक्षित होता है तो समाज और फिर देश का भविष्य भी उसी तरीके से सुरक्षित रहता है। जनधन खातों की हमने बात की, जैम ट्रिनिटी की बात की, 54 करोड़ आपने बताया कि जनधन में खाते खुले हैं, 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि उसमें जमा हुई है। आइए सुनते हैं जनधन से संबंधित एक खास रिपोर्ट।
3: श्रोताओं, वित्तीय समावेशन को अगर बहुत आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है देश के हर व्यक्ति तक बैंक खाता, बचत, बीमा, पेंशन और दूसरी जरूरी वित्तीय सेवाओं की पहुंच। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य उन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था जो अब तक बैंकिंग सुविधाओं से दूर थे। आज इस योजना का दायरा काफी बढ़ चुका है। 19 अगस्त 2026 तक देश में 59 करोड़ 9 लाख से अधिक

0: जनधन खाते खोले जा चुके थे। इनमें करीब 56% खाते महिलाओं के हैं, जबकि लगभग 78% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। श्रोताओं, जनधन खाता एक सामान्य बैंक खाते की तरह ही है, लेकिन इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके माध्यम से लोगों को कई दूसरी वित्तीय सेवाओं से जोड़ा जा सकता है। खाता धारकों को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है और पात्र खाता धारक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। पात्र खातों के लिए दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा भी उपलब्ध है। अब बात करते हैं JAM की। JAM का मतलब है जनधन, आधार और मोबाइल। इन तीनों को जोड़कर सरकार ने लाभार्थियों तक सरकारी सहायता सीधे पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया है। इसी से जुड़ा है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी सरकारी योजना का पैसा किसी व्यक्ति को मिलना है तो पात्र होने पर वो राशि सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचाई जा सकती है। इससे बीच के लोगों की भूमिका कम हो जाती है और लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है। 10 अगस्त 2026 तक DBT के माध्यम से 320 योजनाओं के अंतर्गत 56 मंत्रालयों द्वारा कुल 52,89,19 करोड़ रुपए के अंतरण दर्ज किए गए थे। लेकिन वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है। इसके साथ लोगों को बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को जीवन बीमा कवर मिलता है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना से जुड़े बीमा कवर की सुविधा देती है। अटल पेंशन योजना पात्र लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था से जुड़ी है। जुलाई 2026 तक PMJJBY में 27.84 करोड़ संचयी नामांकन, PMSBY में 58.78 करोड़ संचयी नामांकन और जून 2026 तक APY में 9.29 करोड़ संचयी नामांकन दर्ज किए गए थे। इसके अलावा ई श्रम के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण, आयुष्मान भारत PMJAY के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा और PM स्वनिधि के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को ऋण जैसी पहले भी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के व्यापक ढांचे का हिस्सा हैं। श्रोताओं, इन योजनाओं को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ होती है। जन धन से बैंक खाता, JAM और DBT से सरकारी लाभ का सीधा अंतरण और बीमा योजनाओं से आर्थिक सुरक्षा, पेंशन से भविष्य की सुरक्षा और दूसरी योजनाओं से स्वास्थ्य तथा आजीविका को सहारा मिलता है। यानी वित्तीय समावेशन का मतलब केवल बैंक में खाता होना नहीं, इसका उद्देश्य है देश का आम नागरिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े, अपने पैसे को सुरक्षित रखे, जरूरत के समय वित्तीय सहायता और बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ ले और भविष्य के लिए भी तैयारी कर सके। यही प्रयास वित्तीय समावेशन को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ता है और आम नागरिक को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बनाता है।
1: अगला सवाल शिशिर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जनधन पर हमने ये एक रिपोर्ट सुनी और बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हमने देखे कि किसी भी देश के लिए इतने बड़े पैमाने पर खातों का खुल जाना अचंभा।
2: उस समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको जगह दी गई थी जो पहले दिन खाते खुले थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लोगों का लाभ हुआ है, लोग सशक्त हुए हैं और क्लेम सेटलमेंट भी ठीक ठाक बढ़िया से अच्छे तरीके से हो रहा है। इसमें कहीं कोई बहुत झंझट लोगों को पेश नहीं आ रही है जहां उसकी जरूरत पड़ रही है। अब बात करेंगे पेंशन और वृद्धावस्था की सुरक्षा की। इस मामले में सरकार ने पिछले खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में क्या क्या काम किया है।
2: सबसे पहले तो हम अटल पेंशन योजना की बात करेंगे। देखिए, पेंशन योजना की उपयोगिता क्या है। अब देखिए, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए एक सहूलियत ये रही कि उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता रहा है। यहाँ तक कि जब पहली जनवरी 2004 से पेंशन की व्यवस्था बदली, डिफाइंड बेनिफिट से हम लोग डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पे आ गए, वहां पर भी आपको एक निश्चित रकम तो मिलनी है। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिए कि कितने लोग सरकारी नौकरी में है, दूसरा कितने लोग हैं जो नियमित तनख्वाह पाने वाले जॉब में है। तो श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 22% है ये संख्या, यानी कि 78% वो लोग हैं जिनके पास नियमित वेतन नहीं है। और उनके लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्धशहरी क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, क्या हम उनके लिए रियायती दर पर पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो अटल पेंशन योजना में क्या कही गई कि भाई आपको 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र तक आपको योगदान करना है, 60 वर्ष की उम्र में आपको पेंशन मिलेगा, जो कि उस समय कहा गया 3,000 रुपए मिलेंगे। फिर वही बात आती है कि क्या 3,000 रुपए पर्याप्त है। हो सकता है कि आपको आगे चल करके और बड़ी रकम मिल जाए, और ज्यादा रकम मिले, आप जितना योगदान करते हैं, लेकिन शुरुआत में ही अगर हम संशय जता दें कि 3000 रुपए में कुछ नहीं होने वाला है, तो वो शायद उस योजना के ऊपर ही आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो पहला जो मुझे लगता है कि बड़ा जो सुधार हुआ वो था पेंशन को लेकर के। दूसरा अगर आप देखें तो कई जो वृद्धावस्था की जो पेंशन योजना है

0: है, चाहे जीवन बीमा की कुछ पॉलिसीज हैं जो कि खास तौर पर बुजुर्गों के लिए बनाई गई है। और इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि हमारे देश में सिल्वर इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिल्वर इकोनॉमी का मतलब है कि जो 60 वर्ष से उम्र से ज्यादा लोग हैं वो किस तरीके से अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी क्या उनके लिए किया जा सकता है। और वो इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इस तरह की पेंशन योजनाएं या वयोवृद्ध बीमा योजनाएं जो हम लोग की बात कर रहे हैं उसने कहीं ना कहीं सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। और इन्हीं सब का एक असर ये भी हुआ है कि खास तौर पे रियल्टी प्रोजेक्ट्स आने लगे जो कि सीनियर सिटीजन के लिए खास तौर पे लाए जाने क्योंकि उनका एश्योरेंस हो गया। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ, शायद अरोड़ा साहब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम लोग रिवर्स मोर्टगेज स्कीम कहते हैं। यानी कि आपने जिंदगी भर कुछ कमाई करी, आपने एक घर बनाया और आप जब 60 वर्ष की उम्र में पहुंचते तो जाहिर सी बात है कि हमारे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो आमदनी का स्रोत है वो हमारे लिए सीमित हो जाता है, उस समय हमें ज्यादा जरूरत है। तो हमने जो बना रखा है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करके हम बाकी के दिनों के लिए हम उससे संसाधन का इंतजाम कर सके। ध्यान रखिए कि रिवर्स मोर्टगेज स्कीम पहले भी था लेकिन अब उसकी जो जिस तरीके से इसको कहा जाना कि समय के हिसाब से बदलाव करके उसको उपयोगी बनाया गया, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसा आपने शुरू में कहा था कि वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहले भी थी, कोई नई बात नहीं है, या फिर अगर हम खाते की बात करें वो पहले भी थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम बदलते समय के हिसाब से क्या कुछ बदलाव करते हैं। तो चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, वयोवृद्ध बीमा योजना की हम लोग बात करें, या फिर हम लोग रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के नवीकरण की बात करें, ये तीन ऐसे मामले हैं जहां पर मुझे लगता है कि जो हमारे 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए इंतजाम किए गए।
1: बिल्कुल, और अरोड़ा साहब हम वित्तीय समावेशन की बात कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री अपने जीवन के 25 साल जो जन सेवा में दिए, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से आम लोगों से, गाँव के लोगों से, कई विषम परिस्थितियों से जब वो निपटे, तो उसमें जो आम लोगों से उनकी चर्चा हुई या आम लोगों को जो समझने की कोशिश की, उससे बहुत बड़ी मदद मिली है कि कौन सी स्कीम्स देश में लाई जाएं। और सिर्फ एक स्कीम लाना ही नहीं, जैसे शिशिर अभी बता रहे थे कि सिर्फ जनधन योजना खोल देने से ही काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको बहुत सारी चीजें उसकी सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए देनी होंगी, तभी जाकर वो सफल हो पाएगा। तो हमने जीवन ज्योति बीमा योजना की बात की, लेकिन जब तक हम स्वास्थ्य सुरक्षा की बात नहीं करेंगे तब तक वित्तीय समावेशन की चर्चा दरअसल पूरी होगी नहीं। पूरी तभी होगी जब हम इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा को भी इसमें शामिल करेंगे। आयुष्मान भारत और पीएम जय ने गरीब परिवारों के लिए हेल्थ केयर फाइनेंसिंग की तस्वीर एक तरीके से बदल दी है। व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तो वो एक स्वस्थ सोच के साथ आगे बढ़ेगा और फिर देश आगे बढ़ेगा। आपकी नजर में किस तरीके का बदलाव आपने देखा है पिछले 10-12 वर्षों में?
2: आयुष्मान जो भारत स्कीम है, इसमें दो पार्ट हैं। पहला है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसमें जो हेल्थ केयर स्कीम है, प्रिवेंटिव केयर की है, स्क्रीनिंग की है, या मेडिसिन है, या बेसिक डायग्नोस्टिक है, उसकी फैसिलिटी वहां दी जाती है। और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, इसमें जो है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा दी जाती है। इसमें भी दो पार्ट है, एक तो जो गरीब या वल्नरेबल पर्सन है उनके लिए पहले उनको रजिस्ट्रेशन किया गया, तो एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का वो कैशलेस जो है, जो डेजिनेटेड जो पैनल में हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनको सुविधा दी जाएगी। दूसरा उसमें अब चेंज किया गया, 70 साल एंड अबो उनके लिए भी 5 लाख रुपए की ये सुविधा दी गई है, उसमें इरेस्पेक्टिव इनकम, उसमें कोई इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, खास तौर से मेडिकल फैसिलिटी में। जैसा हम देखते हैं जो गरीब लोग हैं वो बीमार भी पड़ते ही हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं थी कि वो किसी तरह से भी हॉस्पिटल जा पाए। तो उनके लिए एक तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल गए, जहां वो ओपीडी में अपना दिखा सकते हैं, अपना टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, और लगता है अगर उनकी रिकमेंडेशन है कि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन होना है तो 5 लाख तक का उनके लिए सुविधा कैशलेस फैसिलिटी पर ईयर तक की है। और 70 साल से ऊपर लगे सीनियर सिटीजन जो लोग हैं उनके लिए एक फैसिलिटी है कि उनको भी इसमें जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़ी चेंज आई है। उधर आप अटल पेंशन योजना की अभी आपने बात की, जिसमें जो पेंशन की स्कीम है उसमें ऑप्शन है 18 से 40 साल तक के लिए आपने एंट्री लेनी है, उसमें 1000 से 5000 तक की ऑप्शन है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जो भी आपकी ऑप्शन है उसमें आप जो है उस हिसाब से पेंशन 60 साल के बाद आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि अगर डेथ हो जाती है बेनिफिशियरी की, तो उसकी स्पाउस को वही सेम पेंशन अगेन स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो भी उसमें एनरोल है तो उसकी अपनी पेंशन भी होगी, मान ले 5000 की हुई है, 5000 की उनको 10000 होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव है। साथ में जैसा अभी बात की थी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2 लाख रुपए तक का आपका अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो सुरक्षा बीमा योजना में आपको 2 लाख तक का, या डिसेबिलिटी

0: डिसेबिलिटी होती है तो 2 लाख, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए। इसमें जो प्रीमियम है वो बहुत नॉमिनल है, 20 रुपीज सालाना केवल, और 31 मई को कटता है। 1 जून से पॉलिसी शुरू हो जाती है 31 मई के लिए। तो 20 रुपीज के ऊपर 2 लाख रुपए तक का, 20 रुपीज होता ही कितना है, बहुत नॉमिनल अमाउंट है। और आपको अगर डेथ हो जाती है या फुल डिसेबिलिटी होता है 2 लाख रुपए, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए। और 18 से 70 साल के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें अगर नेचुरल डेथ होती है उसमें 2 लाख रुपए, 436 रुपए सालाना, ओनली 436 रुपीज सालाना देकर आपको 2 लाख का बीमा मिल जाता है। तो और इसमें भी एक कंडीशन रखी गई है कि 18 से 50 साल तक की इसमें एंट्री है, लेकिन अगर आप रिन्यूअल कराते रहते हैं तो 55 साल के बीच में भी अगर डेथ हो जाती है तो भी 2 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा सुधार आया है प्रधानमंत्री 2014 के बाद से, कि खासतौर से हमारी जो बिल्कुल गरीब लोग है, तबके लोग है जिनको कुछ भी सुरक्षा की वो नहीं है, उनके लिए पेंशन स्कीम है, एक्सीडेंटल पेंशन स्कीम है, साथ में ये अटल पेंशन योजना होगी, और साथ में उसके बाद आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का आपको मुफ्त में कैशलेस, वो भी आपको जाना है, दिखाना है, इलाज कराना है और सीधा साइन करके आप वापस घर आ सकते हैं, कोई पैसा कोई पेमेंट कुछ नहीं होगी। तो बहुत बड़ा बदलाव आया है खासतौर से 2014 के बाद से।
1: बिल्कुल शिशिर, जैसा अरोड़ा साहब ने बताया कि अगर किसी परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो परिवार बहुत साल पीछे चला जाता है आर्थिक फ्रंट पर, और अगर वो परिवार निम्न आय वर्ग का हो तो फिर तो और भी मुश्किल खड़ी हो जाती है। इस संदर्भ में अगर देखें तो स्वास्थ्य सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाना इस सरकार की सोच का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। साथ ही ये देखें कि चेकअप के साथ, इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी सरकार का बहुत जोर रहा है। आपने तो कई यूज केस देखे और लगातार आप उस पे स्टडी करते रहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इसने निम्न आय वर्ग के लोगों को खास करके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में भी मजबूत किया है, उनकी सोच विकसित की है और उन्हें नए जमाने के हिसाब से अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रेरित किया है।
2: एक बड़ा बदलाव जो 2014 के बाद हमने देखा है वो है जिसको हम लोग कहते हैं कि बॉटम्स अप अप्रोच, टॉप्स डाउन नहीं है। बॉटम्स अप अप्रोच और टॉप्स डाउन अप्रोच अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास जमीनी स्तर से सुझाव आते हैं, उस सुझाव के आधार पर आप अपनी नीतियों में बदलाव करते हैं, और टॉप्स डाउन का मतलब है कि आप ऊपर बैठे, आपने जो फैसला किया नीचे डाल दिया, चाहे नीचे उसकी जरूरत है या नहीं है। आप याद करिए 2015 के बाद जब पहली बार स्वच्छ भारत अभियान की बात की गई थी तो लोगों ने कहा स्वच्छ भारत अभियान क्या, झाड़ू लगाना है क्या। लेकिन एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि आदमी अगर स्वच्छता से नहीं जीता है तो अर्थव्यवस्था में उस कितने हद तक वो नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि उसकी उत्पादकता कम होती है। जब उसकी उत्पादकता कम होती है तो जाहिर सी बात है कि पूरी अर्थव्यवस्था को उसका नुकसान होता है। यही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब ये नहीं कि साल भर में आप हर साल जाकर के बॉडी चेकअप कराते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में ये भी है कि आप उसके लिए आधार ऐसा तैयार करते हैं कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। तो आपके पास अगर हर, जैसे कहते हैं कि हर विद्यालय में शौचालय की बात की गई, घर में शौचालय की बात की गई या फिर स्वच्छता अभियान चलाया गया, ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का पहला स्टेप था। उसके बाद भी भाई देखिए बीमारी कोई बता के तो आती नहीं और बीमारी कभी किसी को आ जाती है, तो आपके पास आप एक सुविधा दे दी कि आप आरोग्य मंदिर में जाकर के आप अपनी स्क्रीनिंग करा लीजिए, आपको जो जरूरत है उस हिसाब से इलाज करवा लीजिए। फिर भी अगर आपको इलाज की जरूरत पड़ती है तो आपके पास प्रधानमंत्री जो जय है, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा ले लीजिए। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको है, जो हमारे निम्न आय वर्ग है, क्योंकि देखिए मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के पास कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, निम्न आय वर्ग के पास विकल्प नहीं के बराबर है,
0: लिमिटेड।
2: अब ऐसी सूरत में अगर हम उनको कहते हैं कि पहले स्वच्छता अभियान में आप आओ, फिर शौचालय की बात आप करो, फिर आप आरोग्य मंदिर जाओ, फिर आप आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करो, यानी कि आपके पास कई सुविधाएं दी गई जिससे कि आप बीमारी से बचें, बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कैसे कराएं। तो मुझे लगता है कि ये जो जिसको कहते हैं ना कि बॉटम्स अप अप्रोच है, कि जमीनी स्तर पर आपने उन परेशानियों को समझा, उसके हिसाब से आपने क्रमबद्ध तरीके से आपने योजनाएं बनाई और फिर जाकर के समाज के उन हिस्सों को जो सबसे जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उनके लिए आपने काम किया।
1: अरोड़ा साहब, पीएम स्वनिधि की हम बात करेंगे। पीएम स्वनिधि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि सोच को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, आज हम इसे हकीकत में देख पा रहे हैं। पीएम स्वनिधि ने इस स्थिति में किन बदलावों का प्रयास किया है और कहां तक हम सफल रहे हैं?
0: पीएम स्वनिधि स्कीम जो है जून 2020 से लागू हुई है और इसमें सबसे बड़ा जो है कोलेट्रल फ्री जो है वर्किंग कैपिटल मिलता है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। अब इसमें सब है, जैसे वेजिटेबल या फ्रूट वेंडर्स हैं, फूड स्टॉल्स

0: वाले हैं, 30 साल वाले हैं, कोबलर्स हैं, बार्बर हैं, लॉन्ड्री वाले हैं, आर्टिशन हैं, ये जो लोग हैं कैसे इनको आर्थिक मदद दी जाए, तो उनके लिए लोन की स्कीम की गई है जिसमें बैंकों द्वारा पहले ट्रांजिट में यानी पहले भाग में उनको 15,000 रुपए, पहले 10,000 रुपए था, अब उसको 15,000 कर दिया गया, 15,000 तक का लोन दे दिया जाता है। और सेकंड जो भाग में अगर वो 15 अपने रिपेमेंट सही हुई तो उसको 25,000 रुपए तक का लिया जाता है, अगर ये फिर ठीक अपने रिपेमेंट की गई तो उसके बाद उसको 50,000 रुपए का लोन दे दिया जाता है। यानी कि 50,000 तक का लोन रेहड़ी पटरी वालों को, वेजिटेबल को, वेंडर्स को, कोबलर्स को, इनके लिए ये सुविधा है। साथ में इसमें इंटरेस्ट की सब्सिडी भी है और जो 7% इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से इनको दी जाती है। कोई इसमें प्रोसेसिंग फी नहीं है, कोई कोलेक्टर नहीं मांगेंगे, कोई सिविल नहीं है, तो यानी कि बहुत इजी है कि इनको लोन मिल जाता है। और ये स्कीम अब 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर दी है, 2020 से लागू की गई थी, अब ये 2030 तक जो है इसको एक्सटेंड की गई है। और इसके लिए आउटले भी अलग से किया गया, 7,332 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें आउटले रखा गया है। तो एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव लाया गया है, जो एक कभी ये बैंक की तरफ आ ही नहीं पाते, इन्हें कोई क्रेडिट की सुविधा वो नहीं थी, या वो मनी लेंडर के पास जाते थे जहां 28%, 30%, 40% तक ब्याज मिलता था। आज वो उनको सस्ते दरों पर बैंक से लोन की सुविधा भी हो रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उन्हें टाइम से वापस करना पड़ेगा। और तभी ये पहली भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग रखा गया कि रिपेमेंट अगर सही है तो हो गया। अब इसके साथ साथ एक नई अभी यूनियन बजट में घोषणा की गई है कि 30,000 रुपए का जो एक है क्रेडिट कार्ड की वो फैसिलिटी भी इनको दे दी जाएगी। यानी ये कितना बड़ा बदलाव हो गया, उनके जेब में क्रेडिट कार्ड होगा, 30,000 तक का वो अमाउंट जो है जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं, और ये रिवॉल्विंग टाइप हुआ, जब चाहे उन पर पैसा है जमा कर दे, उसके बाद फिर 30,000 तक ले लें। यानी एक तरह से एक सुविधा होगी, 30,000 रुपए तक का वो कभी भी उसको अपना यूज।
1: बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की पीएम स्वनिधि के बारे में। लेकिन शिशिर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये तमाम चीजें हुई हैं और कुछ चुनौतियां भी, जाहिर सी बात है कुछ आप अच्छे काम करेंगे कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। डिजिटल वित्तीय व्यवस्था ने, हम सब देख रहे हैं कि जो ये समावेशन है इसको बहुत तेज किया है। आपने शुरू में इस बात का जिक्र भी किया कि अब बैंक जो है घर पर आ गया है, क्योंकि मोबाइल है आपके पास, इंटरनेट है, और मोबाइल तो अब सबके पास है, निम्न आय वर्ग के हों और जनधन आधार मोबाइल के नाते सबके पास एक नंबर होना तो जरूरी ही है। लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी, साइबर फ्रॉड और सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसी चुनौतियां भी कुछ सामने आई हैं। इससे निपटने के लिए आगे क्या कदम जरूरी है, या लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए क्या कुछ और करने की जरूरत है?
2: देखिए, मेरे हिसाब से एक चुनौती तो बहुत बड़ी है, खासतौर पर जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं, क्योंकि अचानक आपके पास एक फोन आता है और कहा जाता है कि आपके बैंक के खाते में गड़बड़ी हुई है या आपका बैंक का खाता अभी कुछ समय के लिए रोका जा रहा है। एक जो व्यक्ति जो कि कम पढ़ा लिखा है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी घबरा जाते हैं। आपने देखा होगा डिजिटल फ्रॉड में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी फंसे हैं।
1: जी जी,
2: तो वो घबराहट तो हो जाती है। अब हमारा काम क्या है, हमने उनको 5-4 प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं कि आपके पास कोई बैंक आपको फोन करता है तो बैंक आपसे कोई ओटीपी नहीं मांगता, बैंक आपसे किसी तरह की जानकारी नहीं मांगता, वो सारी जानकारी एक गोपनीय जानकारी जो कि सिर्फ आपके पास होगी, और जब आप लॉगिन भी करते हैं या आपने अगर आप उसमें कहीं पे आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो वो एस्टिक्स में होता है, यानी कई लोग देख भी नहीं सकते हैं कि आपने कौन सा उसमें नंबर डाला है। तो हमें इसमें सबसे बड़ी इस चुनौती से निपटने के लिए जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता का मेल होना चाहिए। दूसरी चीज, हमें ये बताना चाहिए उनको कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है उनको पता है
1: जी,
2: क्या नहीं करना है, अपने ओटीपी शेयर नहीं करना है। हम देखिए आकाशवाणी पर रोज कई बार इस बात का प्रसारण किया जाता है कि कोई व्यक्ति आपको अगर आपसे ओटीपी मांगे तो बिल्कुल ना दे। दूसरा, उनको ये बताना है कि बैंक आपके लिए जो सुविधाएं मुहैया करा रहा है उसकी लागत क्या है, क्योंकि उसके ऊपर भी कई बार गड़बड़ियां होती हैं, कई लोग कहते हैं कि ये लागत है और उस तरह की लागत है। तीसरा, बैंक अगर वसूली करना चाहता है वहां पर किस तरीके से आपके पास व्यवस्था है, वहां पर कौन से चीजें आती हैं। तो वित्तीय और डिजिटल साक्षरता अगर आपके पास होगी तो ये सारी योजनाएं जो हमने जिक्र की, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन की बात करें, पीएम स्वनिधि की बात करें, मुद्रा की बात करें, या ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की कामयाबी तभी हो सकती है जब सामने वाला व्यक्ति इस विश्वास के साथ बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके कि हमारा कोई नुकसान नहीं हो।
1: अरोड़ा साहब, चलते चलते अब वक्त बहुत कम बचा है, संक्षेप में आप इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय बताना चाहेंगे?
0: पहली बात तो आपको प्रिकॉशन पूरी लेनी है, कोई आपको लिंक नहीं खोलना, अननोन लिंक, कोई ओटीपी नहीं देना, कोई पासवर्ड नहीं देना और पिन नहीं देना किसी को, और अगर मोबाइल चेंज चेंज किया है तो मोबाइल बैंक को जरूर इन्फॉर्म करें, और फिर भी अगर फ्रॉड किसी वजह से हो गया है तो नेचुरल है आपके पास ये नंबर है 1930112।

0: या आप रिपोर्टिंग पोर्टल है इनका, उसके ऊपर लॉगिन कर
1: और जल्द से जल्द करें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 साल अब जनसेवा को दिए हैं और उनका अनुभव गवर्नेंस के तौर पर और विभिन्न योजनाओं के तौर पर देश के समक्ष है, जिसका लाभ आम जनता उठा रही है। और अगर हम पिछले एक दशक की यात्रा को ही देखें तो वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज सामने आया है। शिशिर सिन्हा और अरोड़ा साहब, आप दोनों का आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
4: नमस्कार।
5: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के छठे संस्करण में अभी आप सुन रहे थे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा और आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
6: நேர்களே, கேட்ட இந்நிகழ்ச்சி முன்னதாக இன்றிரவு 7:10 எமது டெல்லி வானொலி நிலையம் ஒலிபரப்பியதன் ஒலிப்பதிவு.
7: சங்கீத சாரல் பல்வேறு இசைக்கலைஞர்கள் பாடியுள்ள கீர்த்தனைகள் வாசித்துள்ள புல்லாங்குழல் இசை, வீண இசை, வயலின் இசை, நாதஸ்வர இசை கேட்கலாம், ரசிக்கலாம். சங்கீத சாரல் ஆகாஷ்வாணி புதுச்சேரியின் முதன்மை அலைவரிசையில் பிற்பகல் 3:30 சங்கீத சாரல்.
6: நேயர்களுக்கு நினைவூட்டுகிறோம், 102.8 FM ரெயின்போ புதுவையில் நாளை பிற்பகல் 2:15 வாழ்த்தலாம் வாங்க காத்தமுத்து கருத்தமுத்து பங்கேற்கும் நேரடி தொலைபேசி வழி நிகழ்ச்சி. நேயர்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் 0413-2275-230, 2271-760.
8: நிழலாய் தொடரும் நினைவுகள், சொல்ல மறந்த நிகழ்வு, சொல்ல துடிக்கும் நினைவு, கண்ணெதிரே தோன்றி மறையும் காட்சி, அடிக்கடி மனதை வருடி செல்லும் உங்கள் வாழ்வில் நிகழ்ந்த அருமையான தருணங்கள்.
9: உங்கள் வாழ்வில் நடந்த சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளை கடிதங்களாக எழுதி அனுப்புங்கள். உங்கள் கடிதம் 300 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
8: உங்கள் விருப்ப பாடல்களையும் எழுதி அனுப்புங்கள்.